काट ना जाए। नाय उमर न होवे सोग, देंदा रहे न चुके भोग। गुणे हो होर नाही कोए, ना को होवा ना को होए। जेवड़े आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। खसम विसारे ते कमजात, नानक नामे बासनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा। बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई। कर दया नाम प्रकाश, मेरे मीत गुरदेव। मोको राम नाम प्रकाश, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीर्त हमरी रह रास रहा, हर जन के वड भाग वडेरे। जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम बिलै त्रिपता सै। मिल संगत गुण प्रकाश, जिन हर हर हर रस नाम न ना पाया। ते भागहीन जमपास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए। त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई। तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत संगत जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रकाश, राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित मैं उदम, जाया हर हर जियो प्रया। सैल पत्थर मैं चंत्यु पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहा। चनन पिता लोक सोत बनता, कोय न किस की धारिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भौ करिया। उडे उडे आवे से कोसा, तिस पाछे बचरे श्रेया। तिन कवन खिलावै कवन चुगावै, मन मैं सिमरन करिया। सब निधान दस सैठ सिधान, ठाकुर कर तल धरिया।

पुरख एक ओहकार सत गुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम्मा अगम अपारा सब त्यावें सब त्यावें तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एक पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा।

शरण परे की राखो शर्मा। कबे उबाच बेनती चौपाई, हमरे करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा।

सुखी बसै मोर परिवारा, सेवक सिख सभ करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करे, सब बैरन को वास संगरे।

जबर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शत्रु हमारे मारिये। आप हान दे मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवरे है। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख लियो मैं राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे।

काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी।

जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेठ सवतारे, आपे अपनी बूझ उचारे।

तुमरा लखा न जाए पसारा, कहबेत सजा प्रथम संसारा, एक रूपया नूप सरूपा, रंक पयो राव के पोपा।

समर्पयो शंकर काठाम। सगरे श्रेष्ठ दिखाय चंपव, आज जुगा स्वरूप से अंपव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सेख्य बार सेख संघरो, दुष्ट जिते उठवा तुतपाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव शरणे परे, तिनके दुष्ट दुख्त हैं मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट ट्रै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाए न हरे हो, ताके ताप तन कमो हरे हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होए, दुष्ट साश सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस देता है उबारा। जिन नर नाम त्यारो कहा, दर्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हां दे ले उबारी, सर्व ठोर मोहो सहाय, दुष्ट दुख ते लियो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सब है, वो भेद कहे हम एक ना जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो बखाने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाह गए की लाजवास, गोविंदास तुहार। रामकली महला तीजा, आनंद को अंकार। सत गुरु प्रसाद आनंद पया, मेरी माए सत गुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया। शब्दोता गावो हरि केरा, मन जनी वसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सुधारो, हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार्यो करे तेरा, कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरात स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे, सदा रो अरनाले साचे साहिबा, क्या नाही कर तेरे। कर ता तेरे सब किश है, जिस दे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारू। साच नामे आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया।

पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिस का होए उधारो ए वस्त तजी न जाई नित नित राख्यो रतारो तम संसार चरण लगत रिया सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवां तेरा कीता जातो नाही मैनु जो की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरिया।

अपना बिरद संभाले, हाथ दे रखे अपने को, सास सास प्रतपाले, प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाय, तन हमारा मीत रहाओ, मन बिलास पै साहिब के, अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई, मन बिलास पै साहिब के, अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों, वडभागियां जिथे आप जीआं ने, संध्या समय नूं मुख रखदिआं शब्द चौंकी उपरंत सोहदार रहिराज साहिब जी दी पावन बाणी दे पाठ सरवण कीते ने, सरबत दे भले दी अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक दी दात बख्शिश कीती है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण कीते हन। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन दा, सेवा निभाउण गिस्तकार योग भाई दिलबाग सिंह जी लुधियाने वाली, आओ तिन्हां दे जथे पासों पावन गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करिए। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

हर रस पाए पल्ले पिए हरस बहुत न तृष्णा लग आए एहो हर रस करमी पाइए सतगुर मिले जिस आए कह नानक होर अनरस सब विसरे

परम सत्कार जो गुरु पैर खालसा सत्संग जी बहुत बड़भागे हो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों में तुम जुड़ बैठे हो। आओ चुकाओ शीस बुलाओ फतेह बख्शो आग्या। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु कृपा करन तुहाडी सारयां दी हाजरी गुरु गुरु की

को सास सास प्रतपाले, औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरध संभाले। हाथ दे राख अपने को सास सास प्रतपाले, प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाय।

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਨ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਲੇ ਜਾਤੇ ਸੁਣੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੇ ਮਿਰ ਚੀਤਾ ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਮੁਮਤਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤਵਨੀਤ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਵ ਸੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾ ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤੋਂ ਨਿਰਨੀਤ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤਵੋਂ ਨਿਰਨੀਤ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ ਸੰਤ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀਆ ਇਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਫਿਰੋ ਖਜੰਤੀਆ ਤਿਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇੱਕ ਭੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਨਾ ਧਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਤਰਕ ਜਿਵੇਂ ਤਸੰਤੀਆ ਜਨਾਨ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਤਿਹਾ ਬਜੰਤੀਆ ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰੇ ਹੱਬੇ ਸਖੀਆਂ ਮੂੰਹ
ਕਹੀ ਨਾ ਜਿਹੀਆ ਜਾਰ ਵੇ ਇੱਕ ਡੂੰ ਇੱਕ ਚਾੜੇ ਹੋ ਕਿਸ ਚ ਤੇਹੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂੰ ਇੱਕ ਚਾੜੇ ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ਤਿੰਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣਤਾਸਾ ਜਿਨੀ ਮਿੰਡਾ ਲਾਲ ਰਜਾਇਆ ਹੋ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਮਨ ਡੇਹੀ ਆ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨੋ ਸੁਹਾਗਣ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਦਿਖਾ ਪਿਰ ਕੇ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਵੇ ਪਿਰ ਆਪਣ ਭਾਣਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯਾਰ ਵੇ ਤੈਰਾ ਵਿਆ ਲਾਲਣ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਦਿਸਨ ਦਾ ਲਾਲਣ ਤੈ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜੈ ਤਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਠਾਕ ਰਹੋ ਗਿੱਧੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਗੁਣ ਹਾਰ ਤੈ ਪਾਇਆ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਭੋ ਕਿਸ ਸੁਹੰਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਨ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਈ ਜੇ ਸੰਗ ਪਧਾਰ ਵਸੰਦਾ ਯਾਰ ਵੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੁਗੇਂਦੀ ਸਾਮੈ ਪਾਈ ਵਾ ਲੋਣੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਾਦਾਈ ਮਹਾਮੰਗਲ ਰਹਿ ਸਥੀਆ ਫਿਰ ਦਿਆਲ ਸਦ ਨਵਰੰਗੀਆ ਵਡ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਲਾਇਆ ਸਾਧ ਕਹਿ ਸਤ ਸੰਗੀਆ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਪਰੇ ਅੰਕ ਅੰਕ ਮਲਾਈ ਬਿਰਮੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਖੇਂਦੀ ਸਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਪਾਈ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਪਰੇ ਅੰਕ ਅੰਕ ਮਲਾਈ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੁਖੇਂਦੀ ਸਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਪਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤਵਨ ਨਰਨੀਤ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਮੀਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾਨ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਰਹਾਉ ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਜਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਣ ਖਾਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀਆ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸਕਾ ਦੀਆ ਪਹਿਨੇ ਖਾਏ ਤੇ ਸਿਉਂ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਮਾਏ ਜਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪਹਿਨੇ ਖਾਏ ਤੇ ਸਿਉਂ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਮਾਏ ਖਸਮ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਏ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਤਿਆ ਗਏ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗ ਲਾਗ ਤੇ ਅਨਲੋਭਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਖਾਵੇ ਪਾਨ ਖਾਨ ਪਾਨ ਜਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸਵਾਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਹਿ ਧਿਆਨ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰਸ ਮੇਰੇ ਪਾਈ
कोट जन्म की मन ल जाय रहाओ, हर की कथा रिद मय समाई, मन बंसले पर पाई, जीवन मरण जन परवान हो, जाके से भगवान कौ ना से जन पूरे, जिना प्राप्त है साधु तू रहे, गौड़ी मल्ला पंजवा, खांदा पैन दा मुकर पाए, जिनो जो तू जम धर्म राहे, ते स्यों बेमुख जिन पिंड जियो पिंड दीना, ते स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना, को जन्म पर में बोजू न रहाओ, स्वागत की ऐसी है रीत, जो किस करे सगल बपरीत, जियो प्राण जन्म तन धारिया, सोई ठाकर मनु बसारिया, बदे बेकार लिखे बोआ का गुरु, नानक उदर कृपा सुख सागुरु, पार ब्रह्म तेरी शरण आए, बंधन कर तरे हर नाय राव, दूजा गौड़ी मल्ला पंजवा, अपने लोभ को कीनो मीत, सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोय, जाते बिरथा कोय ना होय रहाओ, अपने स्वायर दिल धारिया, दुख दर्द रोसल बदारिया, रसना की दी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम, अनक बार नानक बलहारा, सफल दर्शन गोबिंद हमारा, गौड़ी मल्ला पंजवा, कोट बिन हिरे खिन माहे, अरकदा सत्संग सुनाए, पीवत राम रसम गुंजास, जप हर चरण मिटी को तास रहाओ, सर्व कल्याण सुख सहन दान, जाके हृदय वसे भगवान, औखद मंत्र तंद सबसार, करण हर दे मैं तार, ताज सब धर्म परम पजो पार ब्रह्म, कौ नानक अटल ए धर्म, गौड़ी मल्ला पंजवा, कर कृपा पेटे गुर सोई, तितल बल रोग न ब्यापे कोई, राम रमन तरण पैसागर, सनसूर फाशा सनसूर फारे सुख जब कागर हाओ, सतगुर मंत्र दियो हर नाम, ए अस पै काम, जब तसिंज पूरी वड्याई, गुर कृपाल हर पै सहाय, मान मोख होए गुर परम, खेपेख नानक पसरे पार ब्रह्म, गौड़ी मल्ला पंजवा, बिखे राज ते अंदला पारी, दो लागे राम नाम चतारी, तेरे दास को तुई वड्याई, माया मग नरक लै जाई रहाओ, रोग ग्रस्त तारे नाओ, बेहमा ते का ठौर न ठाओ, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, आन सुखा न आवे चीत, आन सुखा नहीं आवे चीता, सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी, मिल नानक हर अंतर जामी, गौड़ी मल्ला पंजवा, आठ पैर संगी बटवारे, कर कृपा प्रभ लहनवारे, ऐसा हर रस रमो सब कोई, सब कला पूर्ण प्रभ सोई रहाओ, मां तवत सागर संसार, प्रभ खिन में पार उतारण हार, अनक बंधन तेरो नहीं जाए, सिमर नाम मुक्त फल पाए, उससे अन पिस्ते कृष्ण नाय, कर कृपा नान गुण गाए, गौड़ी मल्ला पंजवा, हाथी पाई हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड़पागी हर कीर्तन गाइये, पार ब्रह्म तू दे तं पाइये रहाओ, हर के चरण दे हुर तार, पाव सागर चढ़ उतरे पार, साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख न होए, प्रेम भगत पज गुणी निदान, नानक दर गए पाइये मान, गौड़ी मल्ला पंजवा, जल थल मीर पूर्ण अरमीत, परम से गाय गुणीता, उठत बैठत हर संग पहरुआ, जाके सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ, चरण कमल प्रज दिन वास, सर्व दुखा होया नास, वासात मान तान तन एक, साचे साकी मन में टेक,
महागरीब जा साधा नाथ नान प्रभु राखे देहाथ गौड़ी मल्ला पंजवा हर हर नाम मजन कर सूचा कूट ग्रहण पूर्ण फल मूचे रहाओ हर के चरण दे में बसे जन जन के कलवे नसे सासं कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बाज कर्म गोविंद आधार ताते छुट्यो बे संसार कर कृपा की नवापड़ा नानक जाप जपे हर जपड़ा गौड़ी मल्ला पंजवा बहु सरनाई जिन हर जाते मन तीत चरण हर रात पै भजन प्रमन्ना बसाही डरपत डरपत जाओ नंबो जाई रहाओ जाके हृदय विस्योर नाम सगन ताके पूर्ण काम जन्म जरा मृत रिच स्वास सो सम्रा सिमर सागरास मेत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी मल्ला पंजवा बार आक्यो हृदय संभाल कराए गोविंद नाल हर नाम संत कै संग मंता दाता राम के रंग रहाओ गुर प्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किल विख सब हरिया सेवा सुरत नाम भगवंत पूरे गुर का निर्मल मंत चरण कम हृदय में जाप नानक पेख जीवे परताप गौड़ी मल्ला पंजवा ताने थान गोविंद गुण गाए कुशल के प्रवा बसाए राओ बिवता ताह जहर सिमर नाही कोट न जय हर गुण गाए हर बिसरिया दुहरो कनेरे प्रासेवा जमले ननेरे सुवड़ पागी नेचल थान जय जपिए प्रा केवल नाम जय जाइया नाल मेरा स्वामी नानक को पलिया अंतर जामी गौड़ी मल्ला पंजवा जो प्राणी गोविंद त्यावै पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे साधु संग सिमर गोपाल बिनावे झूठा तन माल रूपसु सियाणा जिन मजन मानिया प्रभ का पाणा जग में आया सो प्रवान कट कट अपना स्वामी जान कौ नाम जाके पूर्ण भाग हर चरणी ताका मन लाग गौड़ी मल्ला पंजवा हर के दास साकत ने संग ओ बिखी ओस राम के रंग रहाओ मन सवार जैसे तुरी शिंगारी ज्यों का पुरख पुचारे नारी बैल गौ नेत्रा पाए दुहावे गौ चार सिंह पाछे पावे गढ़ ले काम तिन कर पूंजी सौदे को तावे बिन पूंजी नानक राम नाम जप चीत सिवर समामी हर सामीत गौड़ी मल्ला पंजवा सा मत निर्मल कैयत तीर राम रसैन पीवत पीर हर के चरण दे कर ऊट जन्म ते होवे छूट रहाओ सो तन निर्मल जेति उपजे ना पाप राम रंग निर्मल प्रताप साध संग जात बेकार सब ते उचे उपकार प्रेम भगत राते गोपाल नन जाच सौ दरबार गौड़ी मल्ला पंजवा ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी मेल लय पूरन बड़ पागी रहाओ परता पेख बिसे जो नारी त्यों हर जन जीवे नाम चतारी पूते पेख जो जीवत माता उत पूजन हर स्यों राता लोभी अनंद करे पे तदा जन चन कम से लागो मन बिस नहीं एक तेल दा तार नानक के प्राण पर नानक के प्रपाण दार गौड़ी मल्ला पंजवा राम रसायन जो जन गीत चरण कमल प्रेम भक्ति बीधे रहाओ आन रसादि से सब शार ना बिना निफल संसार आंद गोपते काढ़े आप गुर गोविंद चर प्रताप वाण त्रैण त्रिपण पूर्ण गोपाल ब्रह्म पसारी संग दयाल
कहो नानक सा कथनी सार, मान लेत जिस सिर जनहार। गौड़ी मल्ला पंजवा, नेत प्रत दामन राम सर की जय। चोल महारस हारे अमृत पीजे, राव निर्मल उदक गोविंद का नाम। बचन करत पूर्ण सब काम, संत संगत गोष्ठ होए, कुर्जम के किलवे खोए। सिमरै साध करे आनंद, मन तन रविया परमानंद। जिसे प्राप्त हर चरण निदान, नान दात से कुर्बान। गौड़ी मल्ला पंजवा, सो किश कर जित मैल न लागे। हर कीर्तन में ए मन जागे, रहाओ एको सिमरन दूजा पाओ। संत संग जा केवल नाओ, कर्म तर बेनेम बरत पूजा। पार बिन जान दूजा, ताकि पूर्ण होई काल। जाके प्रीत अपने प्राण नाल, सो बैन हुआ पर पार। कहो नानक जिन तजे बकार। गौड़ी मल्ला पंजवा, जीवत छाड़ जाए देवाने। मुया उनते को वरसाने, सिमर गोविंद मन तन तुर लिखिया। काउ कर नावत बिख्या, रहाओ बिखेठ गौरी जिन जिन खाई। मन तन तुर जिन ताकि तृष्णा कबू न जाई। बिखेठ गौरी जिन जिन खाई, ताकि तृष्णा कबू न जाई। दारन दो दुत्र संसार, राम नाम मैंने को तरस पार। सास संग मिल दो कुलधाद, राम नाम नानक राज। गौड़ी मल्ला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजे दाड़ी। पार ब्रह्म सा अगन मैं साड़ी, पूरा न्यों करे करतार। अपने दास गुराखण हार, रहाओ आद जगाद पर प्रताप। निंदक मुआ जैसा परताप, जिन मार तिन मारिया जी रखे ना कोई। आगे पाछे बंदी सोए, आपने दास राके कंठ लाए। सर नानक हर नाम त्याए। गौड़ी मल्ला पंजवा, महजर की तो झूठा की तुन आप। पापी को लागा संताप, जिसे सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा, राव साची तर के बोले कूड़। सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़, रो व्यापे कर दे पाप। अदली हो बैठा प्रवाप, आप कमाया पे बाते। दर्व किया सब्जी के साथे, नानक शरण परे दरबार। राखी पैज मेरे करतार। गौड़ी मल्ला पंजवा, जान की तूर मन मीट कटानी। पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी, रहाओ अहो बोध मन तूर बेदाई। साध तूर कर शुद्ध मजाई, अनक जला जे तोवे देही। मैल न लागे उत बैन न उतरे, शुद्ध न देही। सतगुरु भेटियो सदा कृपाल, हर सिम सिम काटिया पौ काल। मुक्त पूजा हर लाओ, प्रेम प्रदान गुण गाओ। गौड़ी मल्ला पंजवा, जीवन पदवी हर कह दास। जिन मिलिया तम प्रगास, हर का सिम सुन मकानी। सो पावे अरदार पानी, रहाओ आठ पैर त्याये गोपाल। नानक दर्शन देख निहाल। गौड़ी मल्ला पंजवा, शांत पई गुर गोविंद पाई। ताप पाबिन से मेरे पाई, रहाओ राम नाम रसन बखान। बिन से रोग पहे कल्याण, पार ब्रह्म गुण अगम विचार। साधु संग मैं निस्तार, निर्म गुण गाव निर्नीत। गए ब्याह उतरे जनमीता, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई। नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी मल्ला पंजवा,
नेतर प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण पई सेव रहाओ। शीतला ते राख्या बिहारी, पारवा कृपा तारी, नाम नाम जपे सो जीवै, सा संग अमृत पीवै। गौड़ी मल्ला पंजवा, तानो मस्तक तन तेरे नेत, तन ओ भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लिये, रसना राम नाम जैसे कहिए रहाओ। तेनो पर जाइए कुर्बान, नान जिन जप्या निर्बान। गौड़ी मल्ला पंजवा, तू है मसलत तू है नाल, तू है राखे सार संभाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैर रखे मेरे पाई रहाओ। आगे आपे थान भाजा के, आठ पैर मन को जापे, पत प्रवान साई निशान, जाको आप करे प्रमाण। आपे दाता आप प्रपाल, नेतने नानक राम नाम संभाल। गौड़ी मल्ला पंजवा, सतगुर पूरा प्या कृपाल, हृदय वस्या सदा गोपाल, राम राम सदी सो पाया, म्या करी पूर्ण राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्त्र सुहाग। गौड़ी मल्ला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द वांगू लाहे पेट, बिन कर तूती मुक्त न पाइए, मुक्त पदार्थ नाम ध्याइए रहाओ। पूजा तिलक करत शनाना, छुरी काढ़ लेवे हरदाना, बेद पड़े मुख बिठी है बाणी, जीहां कोहत न संगे प्राणी। कहो नानक जिस कृपा तारे, हिरदा शुद्ध ब्रह्म बिचारे। गौड़ी मल्ला पंजवा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन के पैर की करतारे, बादशाह सावस कर दीनै, अमर नामा रस पीनै। निरपो होए भजे भगवान, निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरण परे प्रवंत्र जामी, नानकोट परि प्रसामी। गौड़ी मल्ला पंजवा, हर संग राते पाए न जलै, हर संग राते माया नहीं छलै, हर संग राते डूबे जला, हर संग राते सुभ भरा, सब पै मिटे तुम्हारे नाए, पेट संगर गुण गाय रहाओ। हर सो राते मिटे सब चिंता, हर स्यों सूरज है जिस भार का ममता, हर सो राते जम की नहीं त्रास, हर सो राते पूर्ण आस, हर सो राते दून लागे, हर सो राता अंदर जागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते परम पौना सै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, हर को नानक तिन को बल जाई, जिन को प्रमिर बिसरत नाही। गौड़ी मल्ला पंजवा, उदम करत शीतल मन पै, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जावत मन पै आनंद, रस गाय गुण परमानंद, के प्या कुसु करे आए, पेट सास गई बलाए रहाओ। नेतर पनीत पेगती दर्स, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोविंद की टहल सबले काया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की नी आप सहाये, सो पाया लग दस दासे पाए, आप गया ता आपे पै, कृपा दा की सरणी पै, जो चाह सोई जा पाया, तटपुर काम को जाया, आस्तर पै बसे सुभासन, गुर पछान सुभासन। गौड़ी मल्ला पंजवा, कोट मजन की नो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित गुण गाय गोपाल, पाप मिटे साधु सरण दया रहाओ।
बहुत उर्द तप साधन सादै अनकलाब मनोरथ लादे हर हर नाम रसन राधे सिमर साहिब बेल बखाने जो ज्ञान सिद्ध सुख माने जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जब प्रस्यो मन माने अगाध बोधर गमा पारे नाम जब नाम हृदय विचारे नानक को प्रभ कृपा तारे गौड़ी मल्ला पंजवा सिमर सिमर सिंह सो पाया चरण कमल हृदय हृदय बसाया चरण कमल गुर दे बसाया गुरु गोविंद पार ब्रह्म पूरा तिसे राध मेरा मन तीरा रहाओ आंदन जपो गुरु गुर नामो ताते सिर पै सल कामो दर्शन दे सिर मन पै जन्म जन्म के कल वे गए कौ नानक कहां पै पाई अपने सेवक की आप पैज रखाई गौड़ी मल्ला पंजवा अपने सेवको आप सहाई नित प्रपाले भाव जा से माई प्रभु की सरण बले सब को एक करतरा पूर्ण सत सोए रहाओ अब मन बसया करने हारा पै बिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राख जन्म जन्म के किल बिखलाथे कहन ना जाए प्रभ की वडियाई नानक दास सदा सुरनाई रागौड़ी चेती मल्ला पंजवा दो पदे क्यों ओंकार सत गुर प्रसाद राम को बल पूर्ण पाई ताते बिरथम ब्याके ब्यापे काई रहाओ जो जो चितवे दास हर माई सो सो करता आप कराए निंद की प्रपत गवाई नानक हर गुण निर्भव गाई गौड़ी मल्ला पंजवा पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गै लियो अंगुरिया रहाओ सरवना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार पिंगुरिया दीनानाथ अनाथ कना में साजन मिता महतरिया चरण कमर दे गए नानक पैसा गर संत पार उतरिया राग गौड़ी ब्राह्मण मल्ला पंजवा एक ओंकार सत गुर प्रसाद दे गुसाई मीतला तू संग हमारे बाजी ओ रहाओ तुझ बिन घड़ी न जीवना तुझ बिन घड़ी न जीवना त्रे रहना संसार जी प्राण सोदा त्या निम निम बलहार जी रहाओ हस्त अलंबन देव पर गर तो उदर गोपाल मोह निर्मथोरिया तू सदी दीन दयाल क्या सुख तेरे संभला कौन विधि बचार सरण समाये दासित उचे अगम पार सगल पदार्थ अर्षित नाम महारस माये सो प्रसन्न पैके स्वास जहां गुण गाए माद पिता सुत बंद पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिखतरिया संसार गौड़ी बैरागण रोहे के संत के घर मल्ला पंजवा के ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारो गावे सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ बन मन गोए फिरत बैरागी बिरले काहू एल लागी जिन हर पाया से वड़ पागी परमा संका चाहे जोगी जती सिद्ध हर आहे जिसे परापत सो हर गुण गाहे ताकि सर्जन बिर नाहि वड़ पागी हर संत मलाई जन्म मन ते मूले नाही कर कृपा मिल प्रीतम प्यारे बिनो सुनो प्रज ऊच अपारे बिनो सुनो प्रभ ऊच अपारे नाग नानक मांगत नाम उदारे राग गौड़ी पूर्वी मल्ला पंजवा एक ओंकार सत गुर प्रसाद कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मो परदेशन दूर ते आई नाहिन दर्ब न जोबन माती मो अनाथ की करो समाई खोज खोज पई बरागण प्रभ दर्शन को फिर तसाई
दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक साध संग मेरी जरन बजाई गौड़ी मला पंजवा प्रभ मिल बे को प्रीत मन लागी पाए लगूं मो करो बेनती कोई संत मिले बड़ पागी रहाओ मन अर्पूं तन राखूं आ गए मन की मत मुसल ते आगे ही जो प्रभ की अरदास सुनावे अंदर फिरो तिस फिरे बरागी पूरब कर्म अंकुर जा प्रगटे पेठियो पुरख रस्क बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी मल्ला पंजवा निक्सरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु सण गोपूर्ण राम रधीरे संग्राह रहाओ प्रम की कुई तृष्णा रस पंकज आति खण मोफा की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमलता के करो नवास कर कृपा गोविंद प्रत प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास कर गए लो नानक स्वामी जियो पिंड साहब तुमरी रास गौड़ी मल्ला पंजवा हर पे करो सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितो दिन रहनी है कोई संत मलावे नेरा रहाओ सेवा करो दा दासन की अंत पाज करो निहोरा तुला ता तोले सुसले बिना दसबो ही थोड़ा सद प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा आनंद सुपेटा नानक जन्म कर सब सवेरा रा गौड़ी पूरी मल्ला पंजवा क्यों अंकार सतगुर प्रसाद किन बेद मिले गुसाए मेरे राम राय कोई ऐसा संत सह सुदाता मो मार्ग दे बताई रहा हो अंतर न जाई लख्या विच पड़दा मैं पाई माया मो सबो जग सोया ए परम कहो क्यों जाई एका संगत एक तग्रह बसते मिलबान करते पाई एका बस बिन पंच दहेले ओ बसत गोचर ठाई जिसका ग्रे तेंदिया ताला कुंजी गुरसो पाई अनक पाव करे नहीं पावे बिन सतगुर संडाई तिनके बंधन काटे सतगुर दिन साधु लिवलाई पंजना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बेद मिलो गुसाई सहज पया परम किन में नाठा मिल ज्योति जोत समाई रहाओ दूजा गौड़ी मल्ला पंजवा ऐसा परचो ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बेले सतगुरु मुझे बतायो रहाओ जात का त देखो तत ता तुम ही मोए बसवास हो आयो कह पै करूं अरदास बेनती जो सुन तो है रघु रायो लिहो सहसा बंधन गो तोड़े ता सदा सहसो पायो ऊना सासो ही फन हो सी सोदो कहां दिखायो खान ब्राह्मण का एक उठाना गुर पर्दा खोल दिखायो नौ ने नाम धान इकठाई तो बार कंठे जायो एक एक कनक अंग पाद साजी बहुत प्रकार चायो कहो नानक परम गुर खोई है एव तत्ते तात मलायो गौड़ी मल्ला पंजवा औद घड़े दिन सरैना रे मन गुर मिल काज सवारे राव

बार जाऊं लख बरिया जय प्रसाद हे पौजल तरिया जन नानक प्रे संग मिरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार सात संघ जी सतगुरु दी अपार बख्श रहमत कृपा दा सदका अमृत वेले सजे दीवाना दी हाजरियां भरियां ने नेत्रे मनसार जो सहज पाठ रम ने बाणी दे पाठ सरवण कीते ने गुरु कृपा करे आप सरबत संगतां नूं सतगुरु चढ़दी कला बख्शन। सो हुण समय है आसकी वार दे कीर्तन दा।

0: असर पिया और कुदर जाती जिनसी रंगे कुदर जी जहान कुदर निकिया कुदर बदिया कुदर मान अभिमान
1: कुदरत पौन पानी पे संतर कुदरत धरती।

सो तुम रिगत मैत तुम ही नानक दास तुम रिगत मैत तुम ही जा नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी अक्यो ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री बहुत जी सहाय वार श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरत है गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंदो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जज ठहे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौन दे आवे ताए सब थाई होई सहाय दसवीं पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब थाई होई सहाय दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दे दर दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे पंजा प्यारियां चौं सब जादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां शीश सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख केंद्र कीता तिन्हां गुरमुख प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म सिर दित्ते बांध बांध कटवाए चरखड़िया ते चढ़े आ रहा नाल तन चरवाए उबलदिया देगा विचो वाले खोपरिया लुहाइया गुरद्वारिया दी सेवा संभाली कुरबानिया कीतिया तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्या असहे ते कह असार दे शीदो सिकिद केसा सवासा संग नवाई तरम निहारिया तिना समूह शीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे पंजा तहता सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान दर खालसे सब बोलो जी वाहे प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रिछे रियायत दे ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाहे सिखानो सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दान सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशनान चौंकियां झटे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसे जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाहे सिखा ना मन नीवा मात उची मात दे राखे आप अकाल पुरख अंतर जामे गुरु गरीब निवास जी पातशाह पम दे सदा सहाय दे तार पिता जीओ श्री ननकाणा साहिब और गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तो पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी निमाणिया दे माण नदाणिया दे ताण नेउटियां दी उन्ने आसरन दे आसरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आप दी पवित्र चरणा विच अरदास बेनती आप जी पार बख्श रहमत कृपा सकामत वेले सजे दीवाना विच आप दी लाही बन दे पाठ उपरंत श्री आस सच कवार कीर्तन जी भोग जी की अरदास बोल जो माफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन सरबत संगतां दी हाजरी तेल फुल पेटावां रस्ता आदिक अपने दर ते प्रवान करदियां सिर ते मेहर प्रयात करना तंदुरुस्तियां बख्शणियां परिवारां विच सुख वरतौणा सरबत संगतां दे कारोबारां विच बरकतां बख्शणियां सेवादारां दे तिर ते मेहर प्रयात करना पंथ नूं चढ़दी कला बणी पवित्र हजूरी विच कड़ा प्रशाद देगा हाजरा दार प्रवान होवै परवान दे संद वरतौण दी आग्या बख्शो मेहर करो पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी सही गुरमुख प्यारे मिलो जिन्हां मिलिया तेरे नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया भई अकाल की सब सिखन का हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ को मिल बोच है
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆ ਰੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ।

कारज आवे धन वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी, माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अधिकाए।

परम सत्कार जो गुरु प्यारिशाह सिंह जी बड़भागे हो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे प्रतख दर्शन कर रहे हो। जिंदगी दा कुछ समा, कुछ सवास सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी चरण शरण विच बैठ के बतीत कर रहे हो। किरत कमाई विचों तुसी गुरु दी गोलक तिल फल पाया, सतगुरु अपने दर प्रवान करन, तुहानू सारिआं नूं तंदुरुस्तियां खुशियां खेड़े सतगुरु बख्शिश करे, कृपा करे। आओ सारी समुची संगत झुकाओ सीस, बख्शो आग्या, बड़े अदब सत्कार नाल झुका के बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु तंदुरुस्तियां तुहानू सारिआं नूं बख्शिश करे, क्योंकि मनुख वाहेगुरु पासों ही मंगदा है। वाहेगुरु दे के, परमात्मा दे के किसे नूं मिणा नहीं मारदा, ते ना किसे नाल काणी बंड करदा। समर्थ गुरु है, बेअंत भंडारियां दा मालक है। साडे आउण वाले सुबासां दा एक एक दी गिणती सतगुणा पास है। गुरु के खालसा जी, किसे ने सवाल कीता सी किसे शायर नूं, वह कहिंदा अगरे फरदोश बरुए जमी अश्तो, जमी अश्तो। वह कहिंदा सी हमी अश्तो, हमी अश्तो, हमी अश्तो, कि दुनिया ते जन्नत किथे आ,

कजर बस्त्र रंग सिंगार रे, बिन फिर सबै बिख लागे ओ, पूछो पूछो दीन भांत कर को, कह प्रे देसा गयो ही ओ, देओ सब तन मन अर्पो शीश चरण पर राखे ओ, चरण बंदरा मोल दास रो, देओ सात संगरदा गयो, करो कृपा मोय प्रभु मिलावो, नेमक दस पे खा गयो, दृष्ट पे ता पे तरा, मेरा मन अंदेशित लाग्यो, को नान रस मंगल गाए, शब्द अनाहत बाजेओ, सारग मल्ला पजमा माई, सात सात सात अर सत, सात सात साधा, भजन गुरु जो पूरा कहो, मैं छीक गाठड़ी बाधा रहाओ, इस बास नखर बिना नखत्र बिना से, रब सचेर बेनादा, गिर बसुद जल पवन ब्याय को साध बनट लादा, अंड बिनासी जेर बिनासी, उत्पुज पिसेद बिनादा, चार बिनासी खटै बिनासी, साध बन हित लादा, राज बिनासी ताम बिनासी, सातक भी बेनादा, दृष्टमान है सगल बिनासी, साध बजना गादा, आपे आप ही आपे सवापन खेल दिखादा, पायन जाई कई पांतरे प्रभ नानक गुर मिल लादा, सारग महला पंजमा मेरे मन, बस बो गुर गोबिंद, जहाँ सिमन पयो है ठाकुर, ता नगर सुख आनंद रहाओ, जहाँ बिसरे ठाकुर प्यारो, तहाँ दुख सवापद, जय गुण गाए आनंद मंगल रूप, तहाँ सदा सुख संपद, जहाँ श्रवण हर कथा न सुनिए, तह महा उद्यान उद्या महा प्यान उद्यानद, जहाँ कीर्तन सार संगत रस, तै सगन बास फलानद, बिन सिमन कोट बरख जीवे सगली और बिरथानद।

सगल का नाम गुना निर्भित जानत सारग महला पंचमा अब मोह राम परोसो पाए जो जो सन प्रयोग करना नित्य पत्राय रहाओ सुख सुगर सगल सह समायो सहसा गुरु गवाए जो चाह सोई हर कियो मन बांछत बल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो सरनी कथा सुनाए चरने चलो मालक ठाकुर कैर स्नार गुण गाए देख देश विसर मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो नाल अमोल नाम हर छोड़ न कतो जाए कवन उपमा कौन बढ़ाई क्या गुण कहो रिजाए होत कृपाल दीन दया प्रभ जन नानक दास दसाए सारग महला पंचमा सुखा सुबन सुनावत अन विरोध पेक प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत राव बिस्म पही पेक बिस्माती पूरे कृपावत पियो अमृत नाम अमोलक जो चा गुंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राख्यो बूझ नावत जावत जा को विकास पयो प्रकाश पयो हर हुआ की कही न जाए कहावत आनु पाव जेते किस करिए तेते सिके पावत अचिंत लाल ग्रह भीतर बैठ्यो अगम जैसे पुरखावत निर्गुण निरंकार अविनाशी अतुलो तुलो अनुजावत कौन नानक अजर जिंजरिया तिसी को बनावत सारग महला पंचमा बिखे दिन रह निवी गोदार गोविंद भजे अंग बुद्ध माता जन्म जुआ जो हर राव नाम अमोला

जाको मंत्र उतारे सहसा उने को सुपर पन हर दर्शन किया गया मानते नाही फुन कर पर भगतन की टहल के महावत गाव सुन गावत दुख काटे ताके जन्म मरन जाको प्यो कृपाल कृप बिठला तिन हरा राजर जन हर सह कहने सह इस मन मुक्ते नाही जात भरन गुरप्रसाद नाम संतो के नाम प्रभु जप जप उदरन सारग महला पिना गायो री मैं गुणद मंगल गायो भले संजोग भले दिनो सजो गोपाल जी जायो राहो संत चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हथा साध मंत्र मोर लो मनुआ तांते गा तो त्रै गुणिया भगत दस देख नैन नंगा लो मोतू टेस परम संगा कहो नाम सुख सहज आनंदा खोल पीत मिले परमानंदा सारग महला पन्ना कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कैसे कहो मोहे जी बिद नाय दर्शन प्यास प्रीत पै प्रीत मनोर मन न रह बो बिद उमकाई राव चेतवन चेतवो प्रै प्रीत बैरागी कद पाव और दर्शाए जतन करो मन नी धीरे को है संत मिलाए जब तो संयम पूर्ण सब हो मोह

ऐसा मल्ला पंचमा क्यों जीवन प्रीतम बिन्ना है जाके मृतक होत मृतका जाके विशेष मृतका अग्र मैं रहना पायरा जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई कहो करो कृपा संतो मोय अपने प्रभ मंगल गुण गाए चरण संतन के माते मेरे उपनैनो दूर बछाए जय प्रसाद मिले प्रभ नानक बल बलता क्या हो जाए सारे मल्ला पंजमा हुआ सर को बल जाओ बल जाए नार पैर अपना प्रभ सिमरन बड़पा गेर पायरा भलो कबीर दास दासन को तुम सहन जन्नाई ऊचे ऊच नाम देव समदर्शी रविदास ठाकुर बनाए जियो पिंड तन तन साधन का एव मन संत रेनाए संत प्रसाद परम प्रभ ना रे नानक मिले गुसाए सार मल्ला पंजमा मनोरथ पूरे सतगुर आप सगल पदार सिमरन जाके आठ बैर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पी वैसे तिसी तृप्तास जन जन के किल विघ्नाशा गदर कलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूलम ना कर कृपा ते चरण त्याहो नानक मन तन दस प्यास सार मल्ला पंजमा करती जाय को अंकार सतगुर प्रसाद मन कहाँ लुभाइए आन कोई तू तो साई जी संग तेरे काम को रहाओ अमृत नाम प्रेरित मनोर यह काम पान को अकाल मूर्त साधा संतन की ठहर ने की ध्यान को बानी मंत्र मां पुरखन के मन अवतार मान को खोज लो नानक सुखथाना हर नाम विश्राम को सारग महला पंजमा मासा मंगल गोविंद गाए रोग शोक मिटे तेरे सगल अखंड अग निमुख ही यार नाम तेरा छोड़ सन बोचत राय साधु सर नहीं जाए पाए जो पे कृपाल दिन दुख पंजन जमते हो धर्म राय एक बिन को एक बिन नाय को दूजा न भी लवे लाए मात पिता पाए नानक

जन के दूर बाजा नित नानक प्रभा मेरा कृपा करे सार मल्ला प्रमाजन राम नाम ते आए एक पक्ष सुसाद समागम कोट बैकुंठ पाए रहा दुर्लभ जेब दबोत पुनीता जमकी दास नवारे माँ पद पात कुत्र हर नाम और तारे जो जो सुने राम जस निर्मलता का जन्म दुख नासा को नाम पाई है बड़ पागी मंथन पे बिगासा सारक मल्ला।

परम परम दुख परिया हो कृपाल दुख गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिस्तर स्वामी जानो कोर लग भरिया सा संग की पी जो पाई सा संग की पी जो पाई तो नानक कर संग मिलिया सार मरला पन्ना आप क्या सोचो सोच बिचारी करना मैं सोए कर रहा देव ना बलहरा चौद से भूल रही बिखया बिख गुर मंत्र मुख करकारी हाथ तेरा क्यों कर अपना जो जल कमला लपारी हो नाही नाही किसमें क्या उसा जाओ सब कल तुम्हें तारी नानक पाक परिवार पाछ राख संत सत्कारी सार कमल मोह सर्ब जी आप मोह सर्ब उपा बिर खाते कन कन सम्राट स्वामी हरे कृष्ण मेरी खातिरा दे

तो गुरमिले जन पराते, कहो नानक मैं सर सुख पाया, हे सुख बयाने राते, सारंग मल्ला पिनमा अमूल्य दया टेका, गुरदयाल पे सुखदाई अंदले मानक देखा राव, काटिया गया निमते मन निर्बलिया बुद्ध विवास बेका, जो जल तरंग फेन जल होई है, सेवक ठाकुर पे का जैते उठते ही आयो सभी एक का नानक दृष्ट आ

आकाश बनावे के तो गो बोला नानक के प्रभु के पुरख बिदाते मैं ठाकुर गया तोला सार मल्ला पंचमा असना राम कैद कुम सोहंग एक नमक उपाय दे उपाय समावे देख जल मनमोहना जो सुनिया मनो हुए रहस अत जिदे मान।

चीत प्रीत चीत पहल रिया जो तो बन दियो मेरे सदगुरु तो मैं सा संगरिया रहा तुम पू हम पुल तुम सा भूला हम पत तुम पत धरिया हम नीचे बिलख तुम मैला कर ला संग संग बसरिया तुम गंभीर किन्ने धीर उपकारी क्या हम बपरे जन तरिया गुर कृपा नानक कर मिलियो तो मैं ये सुख से जरिया सार मल्ला पंजमा मानव दिन तन परवाना सफल ते करी संयोग सुहावे सतगुर संग ज्ञान आला तन सुपाक तन सुहागा तन दे दिन माना यो तन तुमरा सब ग्रह तन तुमरा हियो कियो कुर्बाना कोट लाख सारा सब सुख पाए ए एक निमक बेग दिसाना जो कहो मुखो सेव के बैसिया सुख नानक अंतन जाना सारग महला पंचमा अब मोरो सहसा दुख गया रो पाव सगल त्याग छोड़े सतगुर सन प्यारा सर्व सिद्धा कर प्रभ सब तुम्हारे अहं रोग सगली खेया कोट प्राप्त मिखिन में खो पई है गुरमल हर के पंच दास गुरु असगत की नुमन ने चल निरपया आय न जावे ना कत ही डोले ते नानक राजया सारग मल्ला पंचमा प्रभ मे रोहित तो सा सही मन मोहन में जी को पैर कौन गाऊं गाय रहाओ खेल खिलाए लाडला सा संदाई प्रतपाले बालक की न्याय जैसे मात पिता है तिस बिन मुख न रह सके बिस न कबू जाई कहो नानक मिल संत संगत ते कहो नानक मिल संत संगते मगन पहले बुलाए सारंग मल्ला पंजमा अपना मे स्वामी गाय अपना उसकाऊ की जय सुखदाता ते रहो सुख मंगल कल्याण दिशा कर तिशीस नहीं पाया दिशा प्राप्त मानुक जो सेवो तो नानक लाज लोन हो जाई है एक और पकड़ी ठाकुर की गुरमिल मत बद भाई है गुणदान नान बाब मिलया सगल चुकी मोताई है सारंग मल्ला अपना ओट स्थान है जो मेरा दृष्णा वह दृष्णा वह दृष्णा दृष्णा लियाओ अवर काहू को मान मत प्रभ तेरा अंगीकार कियो मैं प्रभ अपने काट लिया बिख के रह अमृत नाम खुद मुख दिनो जाय पर मुख पेरा कौन पा कहो एक मुख निर्गुण के दाते काट से जो अपना किनो नान सो करे सार मल्ला अपना पास में दुख ना से प्यो के बाल दिन दुख सुख दाता हो ही सर खिला सिराओ अब न कहो सूझे बूझे प्रभिन कहो किस पर जासी न्यू जानो तुम राखो ठाकुर सब तुम किछ तुम्हें पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन अविनाशी कहो नानक मन पिया है काटी जमकी फांसी काटी जमकी फांसी सारे मल्ला मेरो मन जल का तुम्हें सुमारा हम बारक दिन पिता प्रमे जो जान त्यों पार जो जान त्यों पार रहाओ जब भूखो तब भोजन मांगे आगा है सुख सगारा तब रोग जब गुर तुम संग बस तो छोटक तो है रवारा है कवन बसेर उदार दास संग था पियो था अपना नाम नाम बिस्तर तब जीवन पाई है बिनती नानक के सारा बिनती नानक के सारा सार मन लपना मन ते बह को पाओ दूर पर आयो लाल दयाल को गुलाल के लड़ ले सह सह गुण गायो ला गुर बदना कमा कृपा ते बोल न कतों तायो

नमस्कार बूझी तृष्णा सहज सोहेला काम क्रोध बिक जारो आए न जाए बसे ए ठाहर।

अपना तू मैं मिसाकार प्राण मंतन जियो पिंड सब तुमरा ए तन सी तो तुम रहता राव तुम्हें दिए अनेक प्रकार तुम्हें दिए मान सासा तुम्हें बदला को ठाको राखो अंतर जामे जान जिन संतन जाना तू ते ठाकर दे आए परवान जंगा संग सब भाई बड़ बागी नानक देव संतन क्या कुर्बान।

उनका नाम जो बहुत धनाती वो गुरु कैसा हनुमान तारिया गुरु की दूर करुण से मजन किल बेकद मैल उतारिया गुरु पूरे कर करुण सेवा गुरु अपना नमस्कार सब भला देने गुरु पूरे नानक से नानक गुरु नारिया सारक मल्ला।

देख रहे विश्वास सारंग मल अपन में आयो संपन्न को बनना मिसाल कर लाओ बिरता जन्म प्राणी रहाओ समझे चेत मन में कति संत नकत कहानी लाभ ले और इधर आ दो सुख क्या बन जाए उदम सकत श्याम जन की तो उदम सकत श्याम पर तुमरी देता नाम खाने सही भगत भगत से लागे नानक जो प्रभा ने सारंग मल अपन में तलवंत नाम के बन जाए सांझी करो नाम तन काटो गुर का गोर का असद विचार छोड़ो कपटो निर्वैरा सो प्रसंग ने हरे संचत सतन बंजो सतन संचो कब ना बोहारे खाद खर के निकुट नाए अगन परे पंडारे कौ नाम सो बासंग जाओ पार मुंगे द्वारे सारंग मल्ला पंडमा

बंधन तोर राम ने वे राम लीलाए सत्संग बनाए जन्म पदार्थ पे उपनीता इच्छा सर बुझाए जाको कृपा करो प्रमेर है सोर का जस गावे हाल पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सत बल जावे सारे मल्ला अपने जीवन जीवन तो किस जीवन तो कनी अर पे कहा करो कृपा प्रीतम मनमोहन फोर नु गिरे करा कह संत के साथ न उपजत बिन विसार कैसे का प्रभु त्यागान जो चार जा कै मुक लागे का लेखा ता कै मुक लागे का लेखा जा कै रास सुख स्वामी आना मंद पे का नानक दस मगन मन मोयो पूर्ण अर्थ बजे का सारक मल्ला अपना सिमरत नाम को एक नाम कलव दे दो किन पितर खिन अंतर कोरदान मजने कोरदान स्नान रहाओ आन जंजार बिरता सम काल तो बिना फोकल ज्ञान जन्म मरना संकट ते छूटे सिमत साधु सिमत भजन सुख्यान ते

राम नाम रस पीवन झूमी न जल सोर जानो, राम नाम रस संग लीवन, नानक संत चात्र की न्याय हर बूंद पान मुक्त बूंद बूंद पान सुख देवन, सारंग मल्ला बनार के नाम मीन बेताल जेता कलंक राम तेता, सबन दिन दिन जाल रहा प्रभिन सेवे करतम सेवा, बिरता काटा काल जब जावा संगार पण तब तुम लोग कौन हवाल, राख लो ना अन्नदास अपने को सहसा कृपा सुख निदान नानक प्रभु ते मेरा

की मत लेन निमक न निमक समरो यो बंजन दिन रहा खात पिवंत स्वंत सुखिया नाम से मत कहन गर्व बिलाड करता ता और देन मां बात बेकार बेबादा अंजुन परमेन गोविंद बिसर कवन दुख गणिय सुख नान कर पत जीन सारग मल अपन माहिर चन्न गोव चन्न उड़ गही दर्श पे दर्शन पे मेरा मन मोहयो दुर्मत बात जात सही रहो अगह अगा उचबना से कीमत जात न कही कीमत जात न कही जल तल पूर पेक पेक मन भिक्षो पूर यो सर में दीन दयाल पे तो मन मोहन मिल सद है किनों से सिम सिम जीवत नर नानक जाम।

नरक और में पाए, नरक और में पाए, अनक से जाए गंता कर बैगम समाए। शेतन बनते से पत बनते, हर की सन समाए, हर की सन समाए। गुरप्रसाद ना जा जी तो बो ना वह जाए, सार मल्ला पंजमा घर का टेक टुलता कुठार। ब्रह्म पंत के पितर राम नाम दस परा राव, काम को निंदा परा रे काढ़ू के काढ़े साधु के संगमार।

पुनः पुनः नमस्कार। सारे मल्ला भया पोते परमेश्वर का थान सा संगा वै गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान राव साधक से सल मुन लो चै बिरले लागे ध्यान जिसे कृपा लो मेरे स्वामी स्वामी।

ਸਸ ਦਾ ਹਰ ਸੇਵਨ ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਬੁੱਧ ਕਾਚੀ ਮਨੁਆ ਡੋਲੈ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥੈ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਨੈਚਲ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਨੀ। ਮਨ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ ਰਸਨਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਦ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤੋ ਹੋਵੈ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਨਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਹੁਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰੀ ਅੰਤਰ ਨਿ ਕੇਵਲ ਹਰ ਰਵਿਆ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਰਹੇ ਸਚ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਣੇ ਦੁਬਿਧਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਜਗ ਝੂਠੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਅਕਥ ਕਥੀਐ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਚ ਸਮਾਣੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਤ ਮੀਠਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਉ ਪੰਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਡੀਠਾ ਰਹਾਉ। ਕੋਟ ਕੁਟੰਤਰ ਕੇ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨ ਹਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਸੂ ਜੈ ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਏਕ ਬੁਝਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ ਕਟ ਵਸਿਆ ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗ ਚਲੂਲੇ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਾਤੀ ਲਾਲ ਪਈ ਰੰਗ ਲਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਸਾਂਤ ਆਈ। ਪੰਡਿਤ ਪੜਪੜ ਮੋਨੀ ਸਭ ਥਾਕੇ ਪ੍ਰਮ ਪੇਖ ਥਕੇ ਪੇਖ ਤਾਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਆਵਾ ਗੌਣ ਨਿਵਾਰ ਸਚ ਰਾਤੇ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਜਿਨ ਵਿਛੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਉਪਜੈ ਮਨ ਸਾਚੈ ਲਿਵ ਲਾਈ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਏਕ ਸਮੇ ਸਭ ਜਗਤੋ ਵਰਤੈ ਵਿਰਲਾ ਏਕ ਪਛਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਜੈ ਅੰਦਿਨ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਬੂਜੈ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਵਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਈ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੈ ਜਾਣੀ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਿਆ ਬਹੁ ਬਿਧ ਕਰਮ ਕਰਹੇ ਪਾਏ ਦੂਜੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਬੋਰਾਨਿਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਮੈ ਸੋਈ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਬਿਨਾ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੈਲਾ ਦੂਜੈ ਪਰਮਪਤ ਖੋਈ। ਕਿਆ ਦ੍ਰਿੜਾ ਕਿਆ ਸੰਗ੍ਰਹੇ ਤਿਆਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ ਨਾਮੋ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤਾ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਨਾਏ ਲਾਏ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਸੋਈ ਬੁਝੈ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਦੇਖ ਬਿਸਮਾਤ ਇਹੋ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਵਾ ਗੌਣ ਸੰਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋਈ ਬੁਝੈ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ। ਜਿੰਦਰ ਸੂਜੈ ਸੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਗਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੈ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ। ਸੇਦਰ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੇ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਅਦਾਰਾ ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਨਾ ਬੁਝੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਆਪੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਾਨਕ ਸੇਜਨ ਥਾਇ ਪਏ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀ ਪਤ ਪਾਵੈ ਲਿਖੈ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੋਸਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਰੋ ਡੀਠਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਉਪਾਏ ਸਮਾਵਨ ਸਗਲ ਛਤਰਪਤ ਬੀਠਾ ਰਹਾਉ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਰਾਜ ਪਏ ਰੰਕਾ ਉਨ ਝੂਠੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਇਓ ਹਮਰਾ ਰਾਜਨ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਤਾਕੋ ਸਗਲ ਕਟਾ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਉਪਮਾ ਸੁਨੋ ਰਾਜਨ ਕੀ ਸੰਤੋ ਕਹਿਤ ਜੇਤ ਪਹੁੰਚਾ ਬੇਸ਼ ਮਾਰਵਟ ਸਾਹੋ ਦਾਤਾਰਾ ਉੱਚੇ ਹੀ ਤੇ ਉੱਚਾ।
पवन प्रोयो सगल अकारा पाव काष्ट संगे नीर तरण कर राखे एकत कोय नाक सी संगे। घट घट कथा राजन की चाल कर कर तुझे उमाहा जिया जंत सपाछ करया प्रथमे रिजक समाहा। जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दिनी अनेक जतन कर कर हे दिखाए साची साखी चीनी। हर भगतां कर राखे अपने दीनी नाम वडाई जिन जिन कर अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई। मुक्त पय सा संगत कर तिन के अवगन सब पर हरिया तिन को देख पय कृपाला तिन पव सागर तरिया। हम नाने नीच तुम्हें बट साहिब कुदरत कौन बिचारा मंत्र शीतल गुरदर्स देखे नानक नाम अदारा। सारग महला पंजवा अष्टपदी कर छेवा इक ओंकार सतगुर प्रसाद। अगम अगाध सुनहो जन कथा पा ब्रह्म की अचरज सवार हाओ। सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे प्रगास ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मित नाही जाका विस्तार सोभा ताकि अपर अपार अनेक रंग जाके गने ना जाहे सो हरक दूहो मन माहे। अनेक ब्रह्मे जाके वेद तुन करहे अनेक महेश बैस त्यान तरे अनेक पुरुख अंसावतार अनेक इंद्र उबे दरबार। अनेक पवन पावक अरनीर अनेक रतन सागर दद खीर अनेक सूर ससियर नखियात अनेक देवी देवा बहुपात। अनेक वसुधा अनेक काम तेन अनेक पाजात अनेक मुख बेन अनेक आकाश अनेक पताल अनेक मुखी जपिए गोपाल। अनेक शास्त्र सिमरत पुराण अनेक जुगत होवत बख्यान अनेक स्रोते सुनहे निदान सर्व जीव पूरन भगवान। अनेक त्रम अनेक कुमेर अनेक वर्ण अनेक कनेक सुमेर अनेक शेख नवतन नाम लेहे पा ब्रह्म का अंत नाते हे। अनेक पुरिया अनेक तहखंड अनेक रूप रंग ब्रह्मंड अनेक बना अनेक फल मूल आपे सुखम आपे स्थूल। अनेक जुगा दिनस अर रात अनेक परलो अनित उत्पात अनेक जिया जाके गृह माए रमत राम पुरन सर्ब ठाए। अनेक माया जाकी लखीना जाए अनेक कला खेले हर राय अनेक तुने तललित संगीत अनेक गुप्त प्रगटे तहचीत। सबते ऊच भगत जाकै संग आठ पहर गुन गावे रंग अनेक अनाहद आनंद चुनकार उआ रस का कछ अंत ना पार। सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण अपना किया जाने आप आपे कटकट रहे हो ब्याप। कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते पए निहाल। सारग छंत महला पंजवा इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब देखिए अनपै का दाता कट कट पूर्ण है अलिपाता कट कट पूर्ण कर विस्थिरन जल तरंग ज्यो रचन किया। हबरस माने भोग कटाने आना बिया कोथिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता। नान दर्शलीना ज्यो जलमीना सब देखिए अनपै का दाता। कौन उपमा दियो कवन बढ़ाई पूरन पूर रहियो सर्ब ठाई पूरन मन मोहन कट कट सोन जब खिंचै तब छाई। क्यों ना अरादो मिलकर साधो करी मोहतक मेला आई अर्थ दर्ब सब जो किछ दिसै संग ना कछु जाई। कहो नानक हर हर अरादो कवन उपमा दियो कवन बढ़ाई। पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा हियो अरापो देहो संदेशा देहो सदेशा प्रभ जियो कैसा कह मोहन परवेसा।
अंग अंग सुखदाई पूरन ब्रह्माई थान थानंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह ना सको हर जैसा। देख चरित नानक मन मोहयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा। कर कृपा अपने पह आया तन सोरिदा जह चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गवाया। पया प्रकार हृदय उल्लास प्रभ लोड़ीदा पाया दुख नाठा सुकर मैं बूठा महा आनंद सहजाया। कहो नानक मैं पूरा पाया कर कृपा अपने पहे आया। सारंग की वार महला चौथा राय महमे हसने की तुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुरबिन मनता ताक ना उगड़े अवर ना कुंजी हथ। महला पहला ना पीजे रागी ना दी बेद ना पीजे सुरती ज्ञानी जोग ना पीजे सोगी की तैरोज ना पीजे रूपी माली रंग ना पीजै तीर्थ पवै नंग ना पीजै दाती की तै पुन ना पीजै बाहर बैठिया सुन ना पीजै भेड़ मरहे पिड़ सूर ना पीजै केते होवे तूड़ लेखा लिखै मन कै पाए नानक पीजै साचै नाए। महला पहला नव छे खट का करे विचार निस दिन उचरै पार अठार तीन पी अंत ना पाया तो हे ना बिहुण मुक्त क्यों होए। ना वस्त ब्रह्मै अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी। आपे आप निरंजना जिन आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया। त्रै गुण आप सिरजन माया मोह वदाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया। नानक सच वरतदा सब सच समाया। सलोक महला दूजा आप उपाय नानका आपे रखै वेक मंदा किसनो आखिए जा सबना साहिब एक। सबना साहिब एक है वेखै तंदै लाए किसै थोड़ा किसै अगला खाली कोई नाहे। आवे नंगे जाहे नंगे विचे करहे विथार नान हुकम ना जानिए अगै काई कार। महला पहला जिन स्थाप जिया को भेजै जिन स्थाप लै जावे आपे था उथापे आपे एते वेस करावै। जेते जी फ्रहे अवतुती आपे भिख्या पावै लिखै बोलण लिखै चलण कायत की चे दावे। मूल मत प्रवाणा एहो नानक आख सुनाए करणी उपर होए तपावस जे को कहै कहाए पौड़ी। गुरमुख चलत रचायुन गुण प्रगटी आया गुरु बाणी सद उचरै हर मन वसाया। सकत गई ब्रह्म कटिया शिव ज्योत जगाया जिनकै पोतै पुनः गुरपुरख मिलाया। नानक सहजे मिल रहे हर नाम समाया। सलोक महला दूजा साह चले वणजारिया लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुकम होए लियै वस्त समाल। वस्त लई वणजारी वखर बदा पाए कई लाहा लै चले इक चले मूल गवाए। थोड़ा किने ना मंगियो किस कहिए साबास नदर तिना को नानका जे साबत लाए रास। महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े जीव जीव मोय मोय जीवे के त्या के बाप के त्या के बेटे के ते गुरचे ले हुए। आगे पाछे गणत नावे क्या जाति क्या हुण हुए सब करना किरत कर लिखिए कर कर करता करे करे। मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी।
ਮਨਮੁਖ ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਇਆ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਕਮਾਵ ਦੇ ਕੂੜੋ ਆਲਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਮੋਹੇ ਤਹਿ ਸਭ ਦੁਖ ਸਬਾਇਆ, ਜਮਦਰ ਬਦੇ ਮਾਰੀਏ ਪਰਮੇ ਪਰਮਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ, ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਿਨੀ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਓ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਆਦ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹੀਐ, ਕਰੇ ਸੋਏ ਸਲਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰਾ, ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਨਾਹੇ। ਕਰਤਾ ਸੋ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਦਾਤਾ ਸੋ ਸਲਾਹੀਐ, ਜੇ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਦੀਵ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਭੰਡਾਰ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਪੌੜੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਚਰਾ, ਪਤ ਸਿਉ ਕਰ ਜਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ, ਮਤ ਪੰਖੇਰੂ ਵਸ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਨਾਮੇ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਤਿਸਿਓ ਕੈਸਾ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ, ਚਿਰੀ ਜਾਕੀ ਨਾ ਫਿਰੈ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਪਰਵਾਣ। ਚਿਰੀ ਜਿਸਕੀ ਚਲਣਾ, ਮੀਰ ਮਲਕ ਸਲਾਰ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਜਿਨਾ ਚਿਰੀ ਚਲਣਾ, ਹੱਥ ਤਿਨੈ ਕਿਛ ਨਾਹੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੋਏ, ਉੱਠੀ ਕਰ ਲੈ ਪਾਹੇ। ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਿਫਤ ਜਿਨਾ ਕੋ ਬਖਸ਼ੀਐ, ਸੇਈ ਪੋਤੇ ਦਾਰ, ਕੁੰਜੀ ਜਿਨ ਕੋ ਦਿੱਤੀਆ, ਤਿਨਾ ਮਿਲੇ ਭੰਡਾਰ। ਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਂ ਗੁਣ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਕੀਏ ਪਰਵਾਣ, ਨਦਰ ਤਿਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕਾ, ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰਮਲਾ, ਸੁਣਿਐ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਵਸਾਈਐ, ਬੂਝੈ ਜਨ ਕੋਈ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਭਗਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਮੰਤਨ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੋਈ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਤੁਲੀਏ ਤੋਲ ਜੇ, ਜੀਉ ਪਿਛੈ ਪਾਈਐ, ਇਕਸ ਨਾ ਪੂਜੇ ਬੋਲ ਜੇ, ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਮਿਲੈ। ਵੱਡਾ ਆਖਣ ਭਾਰਾ ਤੋਲ, ਹੋਰ ਹੋਲੀ ਮਤੀ ਹੋਲੇ ਬੋਲ, ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਪਰਬਤ ਭਾਰ, ਕਿਉਂ ਕੰਡੈ ਤੋਲੈ ਸੁਨਿਆਰ। ਤੋਲਾ ਮਾਸਾ ਰਤਕ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇ ਪੁਜਾਏ, ਮੂਰਖ ਅੰਧਿਆਰ ਅੰਧੀ ਤਾਤ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਿਣ ਕਹਾਇਨ ਆਪ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੁਣਨ ਔਖਾ, ਆਖ ਨਾ ਜਾਪੀ ਆਖ, ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੇ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੇ ਕਿਹੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਦਿਸੈ, ਜਾਪੈ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਤ, ਸਭ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕੱਟ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੱਟ ਥਾਪ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਨਾਨਕਾ, ਆਖ ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਖ ਪੌੜੀ। ਨਾਏ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ, ਨਾਮੈ ਸਾਂਤ ਆਈ, ਨਾਏ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਈ। ਨਾਏ ਸੁਣੀਐ ਨਾਉ ਉਪਜੈ, ਨਾਮੇ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਸਭ ਜਾਤ ਪਤ, ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਰਾਂਗੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਵੇਦੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪੇਦੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਅੰਨੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਨਾਈ, ਝੂਠ ਨਾ ਮੀਹੋ ਵਰਿਆ ਸਭ ਥਾਈ।
झूठ ना तरती झूठ ना पानी झूठ ना पौने माहे समाणी नानक निगुरिया गुण नाही कोई मुहे फिरिया मोह झूठा होए महला पहला। नानक चुलिया सुचिया जे पर जाने कोए सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सत दान राजे चुली न्याव की पढ़िया सच त्यान। पानी चितना तो पई मुख पीते तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी। नाय सुनिए सब निद है रिद पीछे आवे नाय सुनिए नो निद मिले मन चिंदिया पावे। नाय सुनिए संतोख होए कबला चरण त्यावे नाय सुनिए सहज उपजे सहजे सुख पावे। गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे। सलोक महला पहला। दुख विच जमण दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अग्गै आखिए पढ़ पढ़ करहे पुकार। दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकलियो कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए। नानक सिफती रत्या मन तन हरिया होए दुख किया अग्गी मारिये पी दुख दारू होए महला पहला। नानक दुनिया पस रंग पसु हूं पस खेहो पसु पस कमावनी पी पस परिये देहो। जा जियो विचो कटिये पशु परया जाए अग्गे लिखे मंगिये होर दसुनी पाए पौड़ी। नाए सुनिए सुच संजमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए कट चानना आनेर गवावे। नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना ओ पावे नाए सुनिए पाप कटिये निर्मल सच पावे। नानक नाय सुनिए मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे। सलोक महला पहला। कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नावाल कंगू चनन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए। माणुआ मंग मंग पैने खाए अंधी कमी अंध सजाए भुखिया दे ना मरदिया रखे अंधा झगड़ा अंधी सथै महला पहला। सबे सुरती जोग सब सबे वेद पुराण सबे करने तप सब सबे गीत ध्यान। सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान। सबे मानस देव सब सबे जोग त्यान सबे पुरियां खंड सब सबे जी जहान। हुक्म चलाए अपने कर्मी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीबान पौड़ी। नाए मन्या सुख उपजै नामे गत होई नाए मन्या पत पाइये हृदय हर सोई। नाए मनिए पवजल लंगिए फिर बिघन ना होई नाए मनिए पंथ प्रगटा नामे सब लोई। नानक सदगुर मिलिए नाओ मनिए जिन देवै सोई। सलोक महला पहला। पूरियां खंडा सिर करे एक पैर त्याए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तलै दे। किस उपर ओह टिक टिके किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका जिसनो करता दे। हुक्म रहाए अपने मूर्ख आप गणे महला पहला।
है आखां कोट कोट कोटी हूँ कोट कोट आखूं आखां सदा सदा कहन ना आवे तोट। ना हो थका ना ठाकिया एवड रखे जोत नानक चस्यो चुख बिंद उपर आखण दोस पौड़ी। नाए मनिए कुल उदरै सब कुटुंब सबाया नाए मनिए संगत उदरै जिन हृदय वसाया। नाए मनिए सुन उदरे जिन रसन रसाया नाए मनिए दुख भुख गई जिन नाम चित लाया। नानक नाम तिनी सलाहिया जिन गुरु मिलाया सलोक महला पहला। सबे राती सब देहे सब थीती सब वार सबे रुती माहो सब सब तरती सब पार। सबे पानी पौन सब सब अग्नि पाताल सबे पुरिया खंड सब सब लो लो आकार। हुक्म न जापी के तड़ा कहे नास की जय कार आखे थके आख आख कर सिफती विचार। तृण ना पायो बपुड़ी नानक कहे गवार महला पहला। अंखी परणे जे फिरा देखे सब आकार पूछा ज्ञानी पंडिता पूछा वेद विचार। पूछा देवा मानसा जोद करहे अवतार सिद्ध समाधि सब सुनी जाए देखा दरबार। अगै सच्चा सच नाए निरप पै विणसार होर कच्ची मती कच पिच अंधिया अंध विचार। नानक कर्मी बंदगी नदर लंघाए पार पौड़ी। नाए मन्या दुर्मत गई मत प्रगटी आया नाओ मन्या हूं मैं गई सब रोग गवाया। नाए मन्या नाम उपजै सहजे सुख पाया नाए मन्या शांत उपजै हर मन वसाया। नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया सलोक महला पहला। होर शरीक होवै कोई तेरा तिस अगै तुद आखा तुद अगै तुदै सलाही मैं अंधे नाओ सुजाखा। जेता आखण साहीं शब्दी पाख्या पाए सुबाई नानक बहुता एहो आखण सब तेरी वडियाई महला पहला। जा नास्या क्या चाकरी जा जम्मे क्या कार सब कारण करता करे देखे वारो वार। जे चुपै जे मंगे दात करे दातार इक दाता सब मंगते फिर देखे आकार। नानक एवै जानिए जीवै देवन हार पौड़ी। नाए मन्या सुरत उपजै नामे मत होई नाए मन्या गुण उचरै नामे सुख सोई। नाए मन्या परम कटिए फिर दुख ना होई नाए मन्या सलाहिए पापा मत तोई। नानक पूरे गुर ते नाव मन्या जिन देवै सोई सलोक महला पहला। शास्त्र वेद पुराण पढ़ंता पुकारंता अजाणंता जहां बुझे ता सुझे सोई नानक आखे कूक ना होई महला पहला। जहां हो तेरा ता सब किछ मेरा हो नाही तू होवे आपे सकता आपे सुरता सकती जगत परोवहे। आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखै नानक सच्चा सच्ची नाई सच पवै तुर लेखै पौड़ी। नाम निरंजन अलख है क्यों लखिया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाईऐ पाई। नाम निरंजन वरतदा रविया सब ठाई गुरपुरे ते पाईऐ हृदय दे दिखाई।
नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिए भाई सलोक महला पहला। कल होई कुत्ते मुही खाज हुआ मुर्दार कूड बोल बोल पौंकना चूका तरम विचार। जिन जीवंदिया पत नहीं मोया मंदी सोए लिखिया होवे नानका करता करे सो होए महला पहला। रन्ना हुईयां बोतियां पुरस होए सयाद सीर संजम सुच पन्नी खाना खाज अहाज। शर्म गया कर अपने पत उठ चली नाल नानक सच्चा एक है और ना सच्चा पाल पौड़ी। बाहर पसम लेपन करे अंतर गुबारी खिंथा चोली बहुपेख करे दुर्मत अहंकारी। साहिब शब्द ना उचरे माया मोह पसारी अंतर लालच परम है परमै गवारी। नानक नाम ना चेती जुए बाजी हारी सलोक महला पहला। लक्ष्यों प्रीत होवे लख जीवन क्या खुशियां क्या चाओ विछड़िया विस होए विछोड़ा एक कड़ी मह जाए। जे सोवरिया मीठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए मीठा खाता चित ना आवे कोड़ तन ताए जाए। मीठा कौड़ा दोवे रोग नानक अंत विगुते पोग। चक चख चखना चखड़ा चाख चक चख जाहे चखे तिन पास महला पहला। कापड़ काठ रंगाया रंग कर गचकीने बागे बाग। सा सहज कर मन खेलाया तैस पासो कहन कहाया। मीठा करके कौड़ा खाया तिन कोड़े तन रोग जमाया। जे फिर मीठा पेड़ पाए तो कौड़ तन चुकसमाए। नान गुरमुख पावे सोए जिसनो प्राप्त लिखिया होए पौड़ी। जिनके हृदय मैल कपट है बाहर तो वाया कूड़ कपट कमाव दे कूड़ प्रगटी आया। अंदर होए सो निकले न छपे छपाया कूड़े लालच लग्या फिर जू नहीं पाया। नानक जो बीजे सो खावना करते लिख पाया सलोक महला दूजा। कथा कहानी बिंदी आनी पाप पुन विचार दे दे लेना ले ले देना नरक सुर्ग अवतार। उत्तम मध्यम जाति जिंसी परम पवै संसार अमृत बाणी तत् वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई। हुक्म साज हुक्मै विच रखै हुक्मै अंदर विखै नानक अगहो हुमै तूटै तां को लिखिए लिखै महला पहला। वेद पुकारे पुन पाप सुर्ग नरक का बियो जो बीजै सो उगवै खांदा जाणै जियो। ज्ञान सलाहे वड्डा कर सचो सचा नाओ सच बीजै सच उगवै दरगै पाइय थाओ। वेद

सह ई मनका मात पिदापा ई सुत बनता हित लागो सब फनका रहौ। आगे कहु किस तुलह बंधु क्या प्रभासा तनका कहाँ विशासा इस पांडे का इतनुक लागे ठनका सगल तरम पुन फल पावो तूर बांचो सब जनका। कहे कबीर सुनर संतो एह मानु उड़न पंखीर बणका राग मलार चौप दे महल पहला कर पहला कुंकर सात नाम करता पुरख निरपव निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सपंग प्रसाद। खाना पीना हसना सोना बिसर गया मरना खसम सार खुआरी किन्नी त्रिक जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते हवो अपनी पात से ती कर जाव राहो तुदनों सेवै तुझ क्या देवै मांगै लेवै रह नहीं। तू दाता जिया सबना के जिया अंदर जियो तो ही गुरमत वैसे अमृत पाव है सही सूचे हो ही। अहनस नाम जपुरे प्राणी मैली हचे हो ही जेहि रुत गहां सुख देहा हम तेहु जेहि देहि नानक रुत सुहावी आई हिम बिन नावे रुत के ही मलार मल्ला पहला करो बिन उगर अपने ऊपर जिन हार हार न करो बिनो गुरे अपने ऊपर हर बार अन मिला वै सुन कन को रसी तलवान मोरा लाल रत्ती गुन गावे परस करा बेरा मान पीना अमृत मुँह सुखा नहीं रे मान मोहि हार रस लीना गुर मोहि मन हार रस लीना रहा सहसुख पर कामन पारी।

जित पावै तित लाए ब्राह्मण आपे जान है, गुर कृपा दलही है रहा हूँ। अपना पा वेद पढ़वाद बखान अनदना बखान है, अन दिन नाम बखान वाद बखान है। एक गृह सख्त सिवै कर आवै जीव दे अमर रही है, वेद पढ़े पढ़ वाद बखान है, मेरे शब्द ना सही है। ये तो सही है, त्रैगुण माया जिन पर भुला या अन जन्म मर दुख सस सा उठ बदी में मिले मिले उदासा मलार महल्ला पहला सहज मिले मिले परवान तसनु। यह त्रैगुण माया बिच जगत परम भुला या जब भुला या त्याप त्याय हम सहसा संसारा हम दीन मूर्ख बिचारी तुम चिंता करो हमारी हो दयाल कृपा कर हर जियो हम

राहु। हर हमरो मीत सखाई, हम हर स्यों प्रेत लागी। हर हम गावै हर हम बोलै, और दुतिया प्रेत हम त्यागे। मन मोहन मेरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागे। हर देख जीवत है नानक, एक निम लख पलो मुख लागी। राग मलार महला पंजवाऊ, चौप दे घर पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद क्या तू सोचै, क्या तू चितवै, क्या तू करह उपाय। ता को करहु प्रवाह काहू की, जय गोपाल सहाई।

राव। अनक प्रकार भोजन बो किए बहु व्यंजन बिष्टाए करी पाक साल सूज पवित्रा हुन लाओ भूग हर राई। दुष्ट बदारे साजन रैसे ए मंदर करे अपनाए ज्यों ग्रह लाल रंगहिओ आयो तो मैं सब सुख पाई। संत सभा ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाई जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लग आई। मलार महला पंजवा खीर आधार है बारिक जब होता बिन खीरे रैन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे तब ओ तृप्त काई।

तब खिलाए। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारख भूख कैसे। नाव नित नाम निधान ग्रह तेरे, मन बाछ सो लैसी। पिता कृपाल आ गया ए दिनी, बारख मुख मांगे सो देनाऊ। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोह हृदय बसे नित चरणाऊ। मलार महला पंजवाऊ, सगल विदे जुरहार करिया, तजो सगल अंदेसा। कार्य सगल अरंभो ठाकुर, घर का ठाकुर का पुरुषा। सुनी जय बाज सुहावी, भूरा पिया मैं प्रेम खो पीखे। ग्रह मंगल सोलावी राव, मनुआ लाए सवारे थाना। पूछो संता जाई, खोजत खोजत मैं पाहन मिलियो। भगत करो निव पाई, जप आए बसै ग्रह आसन। तब हम मंगल गाया, मीत साजन मेरे पई सोहेली। प्रभु पूरा गुरु मिलाया।

छोड़ ना जाए दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत खर दोख जठर को परते कृपा निध छूड़ अनको पूजै आत्म काते रहते हर विसरते दुख दुख मरती अनक बार परम बोजोने टेक न काहू तरते राव त्याग स्वामी अनको चितवित मोड़ मुगद खल खरते कागर नाव लंगै कत सागुरु मृता कत तु हम तरते शिव बेरंजा सुर सुर जेते काल गन मैं जरते नानक शरण चरण चरण कमलन के तुम ना डारो प्रभ करती राग मलार महला पंजवा दोप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रा मेरे ओहे बैराग ते आगे हो एक खिन तिस बिन रह ना साको प्रेत हमारे लागे राव उनका संग मोए प्रेत चित आवे संत प्र

तर स्वामी अमेरिक तू को मनहुं बिसारे स्त्री रूप तेरे की न्याय सो बनाही बिन परतारी बिनो

गले हमारे जेवरी जय खिंचे तें जाऊ असि खते बहुत कमावंदे अंत ना पारवा।

ओए जेवड़ियाप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जात, नानक नामे बासनात, राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सत पुरखा, बिनौ करौं गुर पास, हम कीरे कर्मा सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगाश। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगाश, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सें, मिल संगत गुण प्रकाश। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सत गुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगाश।